रविन कडरियाले आर्थिक वर्ष 2081-82 को तुलना में आर्थिक वर्ष 2082-83 में दोब्बर बढ़ी विदेशी पर्यटक एक्याप पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष 2081-82 में 2,78,113 जनाले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र को भ्रमण गरेका थिए। पर्यटक आगमन में गत आर्थिक वर्ष में नया अभिलेख कायम भएको उहाँको भनाई छ। अन्नपूर्ण चक्री पदमार्ग को मुख्य प्रस्थान बिन्दु लमजुङ को बेसी शहर हो। यसमा एक सड़क विस्तार का कारण